0: सबसे अहम जो नुकसान दिखाई देता है,
1: एक नुकसान हुआ वक्त बर्बादी,
0: वो उसका वक्त जो है वो रील देखने में और स्क्रॉल करने में और यूट्यूब वीडियोस देखने में सर्फ हो जाता है।
1: इसके क्या मनफी असरात हमारे जवानों के ऊपर खुसूसन हो रहे हैं?
0: नौजवान को खुद अपने ऊपर वर्क करने पे लगाना चाहिए था या अपनी स्टडीज में लगाना चाहिए था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए।
1: लिहाजा सबसे अहम बात यह है कि कोई भी काम हम करें इस बात को देख के करें कि हमारा इमाम हमारी तरफ जो है वो तवक्को लगाए हुए है कि तुम कुछ ऐसा करो कि हमारे आने का रास्ता और ज़मीना फराहम हो सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, एक नए टॉपिक के साथ सबील पॉडकास्ट पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खैरमकदम कहते हैं एक ऐसा टॉपिक कि जिसका ताल्लुक हमारे समाज हमारे माशरे के हर हर इंसान से और हर उम्र के इंसान से है, और वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल दुनिया, टेक्नोलॉजी के, जिससे कोई भी खाली नहीं है। छोटा सा बच्चा या नौजवान या जवान या मर्द या औरत या बूढ़ा, हर शख्स इससे वाबस्ता है और उसका इससे ताल्लुक़ है। जाहिर सी बात है हर चीज़ का सही इस्तेमाल अगर होता है तो दीन और अक्ल उसकी तारीफ करते हैं और उसको करने के लिए शौक़ भी दिलाते हैं, तशवीक करते हैं। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत हो जाता है और वो हद से ज़्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है अक्ल और दीन सभी उसकी मज़म्मत करते हैं और हर अक्लमंद इंसान उससे दूर रहने की बात कहता है और ताकीद करता है। और यही हाल है सोशल मीडिया का, यही हाल इंटरनेट का, और यही हाल है डिजिटल दुनिया का। आज हम आपकी खिदमत में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डिजिटल लत, कि अगर किसी को ये एडिक्शन हो जाए, किसी को ये लत लग जाए तो उसकी ज़िंदगी कैसे तबाह होती है, बर्बाद होती है, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या इससे इसको कैसे बचा जा सकता है, ये सारी बातें हम आज के पॉडकास्ट में आपसे करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर कुदसी रिजवी साहब, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जवानों से इनका ताल्लुक़ है, स्टूडेंट्स से इनका ताल्लुक है, ज़मीनी हकायक से ये जुड़े हुए और वाबस्ता है। मौलाना साहब सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: खैर मकदम कहते हैं आपको सबील मीडिया में और सबील मीडिया के इस प्रोग्राम सबील पॉडकास्ट के इस प्रोग्राम
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और इस पर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए।
1: जी बेशक। मौलाना डॉक्टर कुदसी रिजवी साहब जो है वो जहाँ एक तरफ एजुकेशन और तालीम से जुड़े हुए हैं वहीं दीनी फ़राइज़ भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं और दीनी तालीमात से भी इन्होंने फ़ायदा उठाया है और बरामद हुए हैं और एक मुद्दत तक इल्म दीन भी इन्होंने हासिल किया है। लिहाजा डॉक्टर मौलाना कुदसी रिजवी साहब अगर इनको कहा जाए तो ये गैर मुनासिब ना होगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी खिदमत में सवाल करूँ कि जो मैंने अभी टॉपिक बयान किया
0: जी,
1: सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे जवानों के लिए खुसूसन और हम मोमिनीन के लिए और जो लोग भी हमारी ऑडियंस देख रहे हैं उनको आप बताएं कि खुद ये डिजिटल लव, ये डिजिटल लत जो है या डिजिटल एडिक्शन जो है इसकी ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा थोड़ा सा आप एक वजाहत कर दें ताकि हम फिर हमारे लिए गुफ्तगू आगे आसान हो जाए।
0: बेशक जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लत या जिसे हम डिजिटल एडिक्शन कहते हैं ये एक तरह की नफ्सियाती एक इफ़ेक्ट का नाम है, एक नफ्सियाती तर्ज अमल है जिसमें इंसान ऑनलाइन दुनिया में खो जाता है कसरत इस्तेमाल के ज़रिए। वो इतना ज़्यादा डिजिटल टूल्स को यूज़ करता है, मोबाइल हो, गेमिंग एप्लीकेशंस हो या सोशल नेटवर्किंग हो, यूट्यूब चैनल्स हों। आज आप जानते हैं कि रील्स जो हैं वो एक एक मिनट की आती हैं, इंस्टाग्राम की रील्स हैं या खुद यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, इनके ज़रिए इनमें इतना ज़्यादा वो खो जाता है कि वो नफसियाती तौर पर उसी दुनिया का एक बाशिंदा हो जाता है। और जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका सारा वक्त या ज़िंदगी का बेशतर वक्त इसी में गुजर रहा हो तो इसे हम डिजिटल एडिक्शन या डिजिटल लत कहते हैं।
1: थोड़ी और वजाहत करें कि किस तबके का, किस उम्र का इंसान किस टाइप की चीज़ में किल्लत उसको लगती है, एडिक्शन होता है?
0: हाँ जी हाँ, असल में वैसे तो आप जैसे आपने इसके इफ्तिताहिया में कहा कि ये चीज़ हर एक को अपने अंदर लिए हुए है कि किसी भी उम्र का इंसान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, जवान हो, मर्द हो, कोई भी साहब हो, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे बच्चों को आप देखिए, अगर ये बिल्कुल ज़मीनी बात कि बच्चे जो हैं वो आप किसी भी घर में आ चले जाएँ, बच्चे जो हैं वो यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत देख रहे हैं और अपनी गेम की दुनिया जो उनके सुपर हीरोज़ हैं उनके जो हैं वो वीडियोस यूट्यूब पे इतना देखते हैं कि उनको खबर भी नहीं होती, ये कई कई घंटे गुजर जाते हैं। नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की रील्स देख रहे हैं और भी जो लोग हैं किसी भी तबके के हों वो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियोस हैं, हर किस्म के वीडियो जिसमें फहाशी भी है, जिसमें जो है वो इसमें रूहानी यानी जिसे कहते हैं कि आपके तकलीफ़ें उसके अंदर ज़्यादा हैं देखने में, क्योंकि वो अपने आप को उसमें देख के फिर तकलीफ़ में आते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम इतने खूबसूरत नहीं हैं, हमारे पास ये गैजेट्स नहीं हैं, हमारे पास ये दौलत नहीं है। तो वो या क्रिकेट की दुनिया है, उसमें इतनी रील्स आती हैं कि आप कई कई घंटे क्रिकेट की ही रील्स देखते चले जाते हैं। तो बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, माएँ हों, औरतें हों, बहनें हों, उनके हिसाब से डिजिटल दुनिया उनको क्यूरेट करके दे रहा है, यानी उनके मुताबिक उनको खाना परोस रहा है, जिसे हम डिजिटल फूड कहते हैं, कि जो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए वैसा मवाद तैयार हुआ है कि जो उसको स्क्रॉल करता चला जा रहा है और वक्त बर्बाद होता चला जा रहा है। और ये इतना एडिक्शन बढ़ जाता है कि अगर बच्चों से मोबाइल छीन लिए तो वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उनकी ख़राब वही फूड हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नौजवान, मैंने ख़ुद ये अपने कानों से सुना है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो अभी अभी 18 साल का बच्चा जो आया है ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट करने के बाद आया है, वो यानी परेशान है, आंखें यानी वो कह रहा है कि मुझे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, जो कुछ मैं देखा करता था वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मकसद है स्टडी करना, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व्ड है कि अब उसको वो दुनिया बेहतर और अच्छी लगती है और रियल दुनिया अच्छी नहीं लगती है।
1: ठीक है, आपने यहाँ पे तस्करा किया स्टूडेंट्स का और छोटे बच्चों का।
0: जी,
1: अगर आप देखें तो इसमें

0: नहीं भैया, एडिक्शन ऐसा है कि यहाँ
1: जी
0: पर वो बच्चा तशद्दुद और वायलेंस की हद तक पहुँच जाता है। मैंने एक रील देखी थी,
1: जी
0: सॉरी एक क्लिप देखी थी, वीडियो क्लिप देखी थी, और वो यूट्यूब पे मौजूद, बहुत सी इस तरह की क्लिप्स मौजूद हैं कि एक माँ है जो देखती है अपने बच्चे को कि वो मोबाइल देख रहा है, और वो आती है उसके मोबाइल बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लेती है।
1: जी
0: अब उस पर शायद वीडियो देख रहा है या गेम खेल रहा है, वो सीसी कैमरे फुटेज उसमें है,
1: हाँ
0: उसमें दिखाते हैं कि गुस्से में छीन लेती है और उसके बाद माँ बैठ के खाना खाने लगती है।
1: जी
0: बच्चा उठ के जाता है कहीं से, वो बैट लेके आता है और सीधा माँ के सर के ऊपर वार करता है। इतना शदीद वार होता है कि माँ की मौत हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: वो गिर जाती है वहाँ पे। बच्चा उस मोबाइल को लेता है और फिर से देखने लगता है।
1: जी
0: इस हद तक तो ये कंटेंट ऐसा बना रहे हैं जिसमें वायलेंस है, जिसमें फहाशी है,
1: जी
0: जिसमें जो है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इसमें इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो एक तरीके से इनहिताद का शिकार हो रही
1: जी
0: है।
1: जी
0: ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक जो सवाल पैदा होता है कि इसके क्या मनफी असरात हमारे जवानों के ऊपर खुसूसन हो रहे हैं?
1: नुकसानात हो रहे हैं, उनमें से सबसे अहम जो नुकसान दिखाई देता है वो है वक्त की बर्बादी, यानी टाइम को किल करना। एक तरफ हम सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया या इसकी लत जो है वो वक्त को बिल्कुल बर्बाद कर देती है, कि वो ख़ास वक्त जो नौजवान को ख़ुद अपने ऊपर वर्क करने पे लगाना चाहिए था या अपनी स्टडीज़ में लगाना चाहिए था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वो उसका वक्त जो है वो रील देखने में और स्क्रॉल करने में और यूट्यूब वीडियोज़ देखने में सर्फ हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है वक्त की बर्बादी के साथ जब आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं, तो मॉडर्न जो हमारे पास साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हैं, और ये इंसान अपने तजर्बे से भी देख सकता है कि ऐसा बच्चा, उसके अंदर इरिटेबिलिटी यानी इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बदमिजाज बदखू होने लगता है। आप जैसे आपने मिसाल दिया मोबाइल छीन लिया या माँ बाप ने कहा कि नहीं बस ज़्यादा मत देखो, तो वो चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल ये रिसर्च आज की से सपोर्ट कर रही है कि वक्त की बर्बादी के साथ साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंसान के टेम्परमेंट पे असर डालता है।
0: सही, तो एक नुकसान हुआ वक्त बर्बादी,
1: जी
0: एक नुकसान हुआ इंसान की ज़हनियत के ऊपर असर।
1: असर
0: वक्त की बर्बादी के सिलसिले में
1: जी
0: कुरान, रवायात, अहले बैत अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ हमको क्या कहते हैं, अकवाल मिल जाते हैं, अकवाल
1: जी
0: ज़र्रीन मिल जाते हैं अहले बैत
1: जी
0: अलैहिस्सलाम के। बहुत मशहूर मौलाए कायनात का कौल है कि इन तहु या फन तहु फुरसल खैर, के अपनी जो खैर की जो वो जो फुर्सत की घड़ियां हैं उनको तुम गनीमत
1: गनीमत जानो।
0: जानो,
1: हाँ जी
0: या
1: बिल्कुल
0: जो है वो कहते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इस तरीके से गुजर जाती हैं, जिस तरीके से बादल गुजर
1: जी
0: जाता है, फिर तुम
1: जी
0: हाथ मलते रह जाओगे
1: हाथ
0: कि मैंने अपनी ज़िंदगी में
1: बेशक
0: कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ जो है वो इंसान की तरक्की में एक जो चीज़ होती है वो इंसान की सोच होती है, इंसान की ज़हनियत होती है, वो चीज़ जो इंसान को जो है वो इंसान बनाती है, वो चीज़ कि जो इंसान को एक आम इंसान से एक इलीट बनाती है,
1: जी
0: वो उसकी
1: जी
0: सोच होती है,
1: सोच
0: उसके
1: है
0: जहन होती है,
1: जी
0: उसके फिक्र करने की सलाहियत होती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये दूसरा नुकसान हुआ कि
1: हाँ,
0: ज़हनियत जो है वो ख़राब होती है।
1: जहनीत
0: तीसरा
1: खराब हो
0: क्या
1: जाती
0: नुकसान हो
1: है,
0: सकता है?
1: ये उसके मिजाज पे उसका असर पड़ रहा है। अच्छा, जहनीत के जाविए से देखिए तो आपने वायलेंस का जिक्र किया, मैंने खुद इस बात को देखा है कि यूट्यूब में जो बच्चों के जो वीडियोस आ रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ये जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं गोर और ब्लडशेड, वायलेंस, मारपीट,
0: जी
1: ये इसका उनसुर, इसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा अब वीडियोस में आ रहा है, देखने को मिल रहा है, और बच्चे उसको देखने के बाद फौरन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो किसी को मारेंगे जाके, वो अगर ज़रा सी कोई बात उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हुई तो फौरन वो उठा लेंगे तलवार, या
0: रिएक्ट
1: वो कोई
0: करेंगे।
1: रिएक्ट करेंगे, या आपने उनको टॉय गन ला के दिया, वो टॉय गन आप ही पे ताने हुए है वो, यानी वो जो देख रहा है जहन उसका, वो डिजिटल दुनिया मोड़ रही है कि तुम ऐसे ही बनो। इससे एक और चीज़ सामने आ, जिस पे इंशाल्लाह हम बात कर सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम आ रही है कि खुद वो अपनी खुदी, वो खुद है क्या, तो वो अपने को उधर से बनवा रहा है कि वो जो दुनिया हमसे कह रही है हमको वही बनना है।
0: फेक वर्ल्ड जो
1: फेक
0: है,
1: वर्ल्ड, वहाँ हाथ में गन है, वहाँ बंदूक है, वहाँ टारगेट दिया जा रहा है कि ये एनिमी है, इनका खून बहाओ, इनको मारो, तो ये जो टारगेट ओरिएंटेड जो दुनिया है ये उसके ऊपर भी असर कर रही है
0: यानी वो
1: क्लासरूम
0: अपने
1: में।
0: अपने को उस दुनिया की मखलूक समझ रहा है।
1: जी ये है, यानी वो ये जैसे आप कहते हैं ना कि आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हम पढ़ाते हैं अपने क्लास में लिटरेचर में, ये आज की डिजिटल दुनिया पे सादिक आ रहा है कि

0: आप जानबूझ के अपने को ये बता रहे हैं कि वो जो है वो है तो फेक, मगर हम थोड़ी देर के लिए उसको सही समझ रहे हैं और उसी का पार्ट अपने को समझ रहे हैं,
1: ठीक
0: तो फिर आप रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
1: सही
0: अच्छा, क्लासरूम में क्या हो रहा है, बच्चों की रिपोर्ट्स है, आप ऑनलाइन देखिए कि बच्चों के अंदर इरिटेशन जो है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा पाया जा रहा है छोटे बच्चों के अंदर। यानी डीयू की जो है, सॉरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है और जो बड़े स्कूल्स हैं वहां पर साइकियाट्रिस्ट को क्यों छोटे बच्चों के लिए आपने रखा हुआ है? क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड के बच्चे को जो है वो जरूरत है नफ्सियात की, कि उसका इलाज किया जाए। ये चीजें जो हैं ये उसके जहनियत को बिगाड़ रही हैं, उसको एक फेक दुनिया में ले जा रही हैं, उसकी अखलाकियात पर बुरा असर डाल रही हैं, और वो अपने घर के अफराद से डिसकनेक्ट रहता है और ऑनलाइन दुनिया से कनेक्टेड रहता है।
1: एग्जैक्टली, यानी घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, लेकिन वो घर में रह रहे हैं,
0: घर
1: छोटे
0: में रह
1: बच्चे
0: रहा है।
1: रह रहे हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, और वो उस मोबाइल से
0: मोबाइल से है
1: कनेक्ट। यहाँ
0: जी
1: पर ज़्यादातर जब हम डिजिटल एडिक्शन की बात करते हैं
0: जी
1: तो ज़्यादातर जो गुफ्तगू होती है वो स्टूडेंट्स, जवानों और बच्चों की होती है।
0: जी
1: दूसरा तबका जो हमारे समाज का है, घर की ख़वातीन हैं,
0: खवातीन जो है,
1: वालदैन, उनके बारे में
0: हाँ,
1: क्या कहेंगे आप?
0: उनके बारे में, यानी इस बीमारी ने या इस वायरस ने उनको भी टच किया हुआ है और उनको भी मुतासिर किया हुआ है। मसलन खवातीन के बारे में जो अब एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि इतने ज़्यादा रील्स जो हैं वो उनको भी अपनी तरफ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनके बैकग्राउंड के एतबार से, उनके इंटरेस्ट के एतबार से डिजिटल दुनिया उनको वो रील दिखाती है। कॉस्मेटिक्स की रील उनको दिखाएं, ब्यूटी कॉन्शियसनेस उनको बनाया जाए, ब्यूटी कॉन्शियस उनको बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के, अगर कहिए कि खाने और पकवान ही वाले हैं तो उसमें भी वो काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिससे वो उनके और काम मुतासर होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि चलिए खाने पीने को सीख रही हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वक्त का ज़या यूं हो रहा है कि बेहुदा ड्रामे और बेहुदा रील्स और बेहुदा बातें उनके जहन के अंदर डाली जा रही हैं। झूठे कंपैरिजंस, झूठे ब्यूटी के स्टैंडर्ड उनको दिखाए जा रहे हैं, सास बहू के झगड़े उनको दिखाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कि देखो आज़ाद औरत वो होती है कि जो अपने औरत अपने शौहर की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, बल्कि शौहर उसके कदमों में है, इस तरह की बातें उसको बताई जा रही हैं। या उसको फेमिनिज्म का ओवरडोज दिखाया जा रहा है कि तुम किसी की मातहत नहीं हो, बल्कि तुम खुद मुख्तार हो और शौहर तुम्हें, तुम्हारा वली नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे जेरे निगरानी है। इस तरह की बातें जब आप दिखाएंगे और बाहर की रील औरतों को दिखाएंगे तो यहाँ की और डोमेस्टिक जो लाइफ है उस पर बड़ा असर पड़ता है।
1: जी, अभी आपने यहाँ पे बात की, मसलन ख्वातीन जो है वो
0: जी
1: मुख्तलिफ चीज़ें देख रही हैं यहाँ पे, वो उनको दिखाया जा रहा है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हारा फिगर कैसा होना चाहिए,
0: ये तो पूरा फिजिकल
1: तुम्हारे
0: एट्रीब्यूट्स।
1: बाल कैसे होने
0: जी
1: चाहिए।
0: जी
1: और रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंस्टाग्राम,
0: जी
1: 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है
0: जी
1: कि इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने बाकायदा कोर्ट में उनको बुलाया गया, इनके जो को फाउंडर हैं,
0: जी
1: मैं जहन में नाम मेरे नहीं, इंस्टाग्राम को जो को फाउंडर है, और इन लोगों को बुलाया गया कोर्ट में बाकायदा, जिसमें से एक सवाल इसमें ये है कि इंस्टाग्राम पर जो है वो एक खातून, एक लड़की जो अभी टीन एज है, ठीक है, टीनेजर है वो, और वो मिसाल के तौर पर उसका जो बदन है वो थोड़ा हेल्दी है, मोटी है,
0: जी
1: वो अपने आप उसको ये बताने के जहन में डाल दिया है कि तुम मोटी हो तो तुम अगली हो, ठीक है, और तुमको रहना कैसे है, तुमको रहना है बारबी डॉल की तरह से,
0: सही
1: उसके जो बाल हैं वो
0: जी
1: सुनहरे हैं, उसका जो फिगर है
0: जी
1: वो ऐसा है, अगर तुम ऐसी नहीं हो तो तुम खूबसूरत
0: नहीं
1: नहीं हो। यानी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर दी गई है, और वो वैल्यूज़ इंसान के जिस्म और फिगर में आ गई है,
0: बेशक
1: जबकि दीन इस्लाम वो जो दीनी इलाही अकदार हैं वो ये हैं कि तुम्हारी जो हैसियत है, तुम्हारी जो वैल्यू है वो तुम्हारे अच्छे अमाल की वजह से है, तुम्हारे तकवा की वजह से, मेरिट के ऊपर है,
0: मेरिट के ऊपर अखलाक है
1: तुम्हारा
0: तुम्हारा।
1: अखलाक है, तुम्हारी एजुकेशन है,
0: जी
1: तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं, तुम
0: जी
1: समाज के लिए, तुम माशरे के लिए किस कदर कारमंद हो।
0: सही
1: लेकिन आज एक लड़की जो है वो उसका सारा हमागम ये है कि मेरा, मैं दिखने में कैसी
0: ये
1: हूँ।
0: नहायत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने जिक्र किया है। ये इंस्टाग्राम पर आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और इससे मुताल्लिक बास किताबें भी इस वक्त हैं कि जो दिखाती हैं कि सोशल मीडिया का इफेक्ट क्या है नौजवान की वेलबींग पर, जिसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। एक किताब है, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, नौजवान चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, द ब्यूटी मिथ के नाम से एक किताब है जिस पर हम लोगों ने बहुत पहले उसको पढ़ा था। उसमें भी इन्हीं बातों को पेश किया जा रहा है कि ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है,

0: और ये जो फैशन इंडस्ट्री है ये आपके सामने फॉल्स स्टैंडर्ड दिखाती है कि असल में मेयार ये है जो हम तुम्हें बता रहे हैं. अब मुख्तलिफ किस्म की जब इमेजेस आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं और रील्स देखते हैं तो उसमें जो खूबसूरती दिखाई जा रही है जो कि बाकायदा फिल्टर्ड है, उस पर फिल्टर्स लगाए गए हैं, उसको ख़ास तौर से बनाया गया है कि वो बहुत खूबसूरत लगे, इंसान उसको देख के बिलखसूस जो लड़कियां हैं जैसे आपने जिक्र किया वो उसको देख के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है. और ये कॉम्प्लेक्स इतना गहरा हो जाता है कि उनको लगता है कि अगर हम इस तरह के नहीं हैं तो फिर हम बदसूरत हैं,
1: ये अच्छे ही नहीं है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं,
0: यानी हमारी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. जैसे आपने कहा ना कि असल में वैल्यू दीन के मुताबिक आपकी रूह और आपकी बातिन के अंदर जो कमाल है उसकी है,
1: ना फकत दीन के मुताबिक, अकल के मुताबिक,
0: अकल के मुताबिक,
1: दीन और अकल में कोई तजाद नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि जो हुक्म दीन दे रहा है वो है अकल के मुताबिक है, और जो चीज अकलानियत है दीन उससे कभी
0: इनकार नहीं करता है. बेशक
1: यहाँ पे एक बात आपने कही गेमिंग के हवाले से, मुकम्मल तौर पर कंडीशनिंग की गई है लड़कियों की कि तुमको खूबसूरत दिखना है तो ऐसा होना चाहिए,
0: ऐसा
1: और
0: होना
1: ये चीज़ जो है कुरान जिसकी तरफ इशारा करता है वो बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान करीम की. मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में मफहूम उसका पेश करूँ, शायद ज़य्यना लहुमुश शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है
0: ज़ाहिरन
1: के शैतान का जो एक काम होता है वो तुम्हारे लिए वो दुनिया को खूबसूरत सजा के पेश करता है और वो तुमको बताता है कि हकीकत ये है तुम्हारे लिए, बिल्कुल बेहतर नहीं है. अरे अगर आज से 20 साल 25 साल पहले कोई इस आयत को जो है वो पढ़े या उसको समझने की कोशिश करे शायद बहुत ज़्यादा कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो ये आयत एग्जैक्टली बता रही है कि किस तरीके से इंस्टाग्राम, किस तरीके से सोशल मीडिया वो तुम्हारे सामने शैतान दुनिया को तुम्हारे सामने सजा के पेश कर रहा है और तुमको उस हकीकत से निकाल रहा है बाहर कि तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, तुम्हारा सामना, तुम्हारा जो जो क्या कहते हैं अपीयरेंस है
0: वो मैटर करता है, यानी एक इल्यूजरी दुनिया, एक इल्यूजन की तरफ आपको लेके जाना. गालिबन अगर मैं एक जुमला और ऐड करूं कि यही एक मतलब हम वहां से भी निकाल सकते हैं कि नूर से जुलुमात की तरफ जाने का जो सफर है हम इस दुनिया में भी देख सकते हैं कि हकीकी दुनिया से गैर हकीकी और बनावटी दुनिया की तरफ सफर करवाता है ये डिजिटल एडिक्शन.
1: ये एक बात है और डिजिटल एडिक्शन जो है वो सोशल मीडिया की रील के बारे में आपने बयान किया, गेम के बारे में अगर हम देखें जब गेम का तस्करा आता है तो फिर उस वक्त हम फिर वही बात जाती है बच्चों की तरफ
0: जाती
1: है. बच्चों से मखसूस है?
0: बच्चों से मखसूस नहीं है बल्कि नौजवान, बल्कि हर उम्र का, यानी हमने खुद आप अगर सर्वे करें तो 40-50 प्लस वाले भी गेम खेलते हैं. ऐसा नहीं है कि फ़कत जो है वो 5 साल का बच्चा गेम खेल रहा है. भाई ये जो प्ले स्टेशन के जो गेम्स हैं इतने मशहूर है कि बड़े बड़े लोग खेलते हैं, हमारी उम्र के बच्चे के लोग भी जो हैं वो जो जवान हैं वो भी खेलते हैं. प्ले स्टेशन 4 है, एक से एक हाई डेफिनेशन के गेम्स हैं, मैंने खुद देखे हैं बाज़ गेम्स कि उसमें, यानी गेम तो ये है कि चलिए आपको एज एन AI जो है उसमें वो काम हो रहा है कि आप एक वो हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपको फलां जगह जाके जो है उसको इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके मेन एनिमी को जाके मारना है, लेकिन आपके साथ एक औरत को लगाया गया है जो नहायत खूबसूरत औरत है और AI ने उसको क्रिएट किया हुआ है, उसके खदोखाल जो हैं वो आपको बाकायदा दिखाई दे रहे हैं गो के वो कपड़े पहने हैं, लेकिन वो इतनी जाजिब नज़र है कि जब वो नौजवान उसको देखेगा तो उसकी वजह से वो गेम खेल रहा है. अच्छा अब इससे देखिए, इसी में एक बात और आती है साइकोलॉजी की दुनिया में, डोपामाइन इफेक्ट एक थ्योरी है कि ये जो चीज़ है ना कि आपके आपको पहले दिखाया कि तुम इतने अहम हो कि तुम्हारे सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुमको मिला है, तुमको एक ख़तरनाक दुश्मन को कत्ल करना है, तुम्हारे पास ख़तरनाक हथियार हैं और साथ में तुम्हारी एक एजेंट भी है जो नहायत खूबसूरत है, जो तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहेगी. तो आप अपने को एक सुपर हीरो समझ रहे हैं, एक एजेंट समझ रहे हैं कि इसकी बड़ी ताकत है, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी भी आपके साथ है. डोपामाइन जो है वो आपका जो हार्मोन है वो आपको प्लेजर की तरफ उभारता है कि इससे आपको एक फिजिकल और एक लस्ट वाला सुकून भी मिल रहा है, एक प्लेजर मिल रहा है कि इतनी खूबसूरत लड़की आपके साथ है, प्लस आप एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं जिसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि आप नेक्स्ट स्टेज आपके लिए खुल जाएगी,
1: जबकि
0: बिल्कुल अलग है बात. इसमें इतना गेमिंग में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको वही दुनिया पसंद आती है,
1: बिल्कुल वहां पर जाने के बाद फिर वो जो हकीकत है जब वो जमाने की मुश्किलात को फेस करता है,
0: हाँ
1: जब वो रियलिटी

0: का सामना उसको होता है, तो फिर उसके लिए फिर वो ज़िंदगी दूभर हो जाती है,
1: बहुत
0: बहुत से मुश्किलात उसमें आते
1: आती
0: हैं, इंसान नाकाम हो जाता है,
1: हाँ
0: उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है,
1: ये है।
0: एंग्जाइटी का शिकार
1: हाँ
0: होता है।
1: एंग्जाइटी बहुत बढ़ रही है
0: बाद
1: जी
0: उसके बाद जो है ये जो मुश्किलात उससे पैदा होती
1: जी
0: हैं, मैं
1: जी
0: उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, बाद में जो है वो हद जो है, यानी यहाँ पे जो है वो पहुँच जाते हैं सुसाइड की हद तक लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि
1: होता है,
0: अभी उस दुनिया में वो चीज़ें वो नहीं पा रहा है।
1: जाहिर
0: ठीक
1: सी बात
0: है,
1: है,
0: तो ये उसी शैतान के सजाई दुनिया का जो है वो एक नमूना
1: वो तज़ईन जो किया
0: दिया
1: उसने,
0: उसने।
1: ब्यूटिफाई किया।
0: और
1: जैसे एक ब्लू व्हेल गेम आया था, उसमें बाकायदा वो पूरी दुनिया में उसको बैन किया गया है। उसमें जो आपको असाइनमेंट्स मिलते थे, उसमें था कि रेल की पटरी पे जाके लेट जाओ, जाके नौजवान लेट गया मर गया, क्योंकि उसको ब्लू व्हेल गेम में यही असाइनमेंट मिला था। तो देखिए रियल वर्ल्ड ने कितना आपको पागल कर दिया है कि आप रियल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ये शिनाख्त बहुत जरूरी है कि ये रील है और ये रियल है। ये अगर नहीं, इसकी तशखीस नहीं है, तो इंसान उसी दुनिया का होके रह जाता है। जैसा आपने फरमाया कि जो यहाँ जो इब्तिला और मुसीबतें और असाइनमेंट्स और परेशानियाँ और जो इम्तिहान की भट्टी से गुजारा ताकि पोटेंशियलिटी या कैपेबिलिटी उभर के आए, वो बिल्कुल नहीं आ पाती
0: देखिए हाँ बिल्कुल, इस्लाम या यूँ कहा जाए कि दीन का और अक्ल का
1: जी।
0: जो वो सिस्टम है बिल्कुल वाज़े है।
1: जी
0: आपको इस दुनिया में पैदा किया गया, अल्लाह ने
1: हाँ
0: आपको इस दुनिया में पैदा किया है,
1: जी
0: इस दुनिया में आपको अल्लाह ने सलाहियत देकर पैदा किया
1: बेशक
0: है,
1: बेशक
0: एबिलिटीज़ आपके पास
1: जी
0: हैं, आपके पास जो है वो सोचने समझने की सलाहियत है। यहाँ पर ये दुनिया, यहाँ पर जो मन जद्दा वजदा, मौलाए
1: बेशक
0: कायनात फरमाते हैं कि जो कोशिश करेगा वो पाएगा।
1: बेशक
0: ठीक है, तो जो कोशिश कर रहा है, जो अपनी सलाहियतों का, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, वो पाएगा। और ये हकीकत है, यहाँ पर मुश्किलात हैं, यहाँ पर आप उनको मुश्किलात को अबूर करके आपको एक दर्जा और एक मकाम तक पहुँचना है ज़िंदगी में। और
1: जी
0: कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो दारे बला है, यहाँ
1: बेशक
0: पर कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप क्या कहते हैं मुश्किलात के बगैर अंजाम दें। चाहे वो आप क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज में जाइए, आपको पढ़ना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना
1: करना
0: पड़ेगा, मेंस
1: पड़ेगा
0: क्लियर करना
1: जी,
0: पड़ेगा, इंटरव्यू
1: सही
0: क्लियर करना पड़ेगा। आप जो है वो
1: हाँ
0: क्या कहते हैं मेडिकल लाइन में जाएं तो वहाँ पर आपको नीट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा,
1: कितना
0: आप
1: सख्त एग्जाम है
0: सख्त
1: जी
0: एग्ज़ाम्स
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जो भी अगर आप इल्मे दीन में आए हो,
1: हाँ
0: दरसे खारिज पढ़ना पड़ेगा, आपको 14-15 उलूम के ऊपर उबूर हासिल करना पड़ेगा, फिर मरजे तकलीद बनना
1: जी,
0: पड़ेगा, और बहुत से मसाइल
1: बहुत से
0: अगर देखें
1: मसाइल
0: आप। तो सोशल मीडिया या डिजिटल एडिक्शन जो है वो इंसान को हकीकत से और हकायक से दूर करता है, जिसके
1: जी
0: नतीजे में ये सारी मुश्किलात जो मैंने अर्ज़ की हैं, डिप्रेशन,
1: आती हैं,
0: एंग्जाइटी,
1: बिल्कुल आती हैं
0: ये सारी चीज़ें हैं। गेमिंग की बात हो रही थी,
1: जी।
0: आपने जवानों की बात कर दी, ख़वातीन की बात यहाँ पे हो गई। हमें एक और बात मेरे जहन में आई, वो ये कि हमको बहुत सी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि गेम्स के वजह से रिश्ते टूट रहे हैं।
1: गेम्स की वजह, जैसे ख़वातीन पबजी खेल रही हैं। अब ये भाई हम तो हमने तो नौजवान लड़कों को देखा कि अपने महल्ले के बाहर चार पांच खड़े हुए हैं और एक साथ मोबाइल में, उनको खबर भी नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई टकरा रहा है क्या हो रहा है, और चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कस कस कह रहे हैं भागो भागो यहाँ से बटो यहाँ से बचो पीछे से हमला हो रहा है। तो लोग उसे घूर घूर के दे रहे हैं ये क्या कर रहा है, उसको तो पता नहीं है, वो तो कान में लगाए हुए हेडफोन और चिल्ला रहा है चीख रहा है पूरे रास्ते, वो ये करता चला रहा है। अब ये लड़कियों के अंदर भी एडिक्शन आया, उनके हिसाब से उनको उनके गेम्स डिज़ाइन किए जाएंगे, और वो भी जैसे आज आज की तरक्की याफ्ता दुनिया कहती है कि भाई जो लड़के कर रहे हैं वो लड़की भी कर सकती है। तो अगर लड़के खतरनाक आर्मी वाले या मिलिट्री वाले या वॉर वाले गेम खेल सकते, तो लड़की भी खेल सकती है और खेल रही हैं, वो भी मार काट धाड़ मारना काटना ब्लड बहाना, इनको कत्ल करना, उनको उनको उड़ा देना, बम मार देना, गोलियां क्लैशनकोव वो भी इस्तेमाल कर रही है। ये बच्ची के जो इतना ज़्यादा यानी जैसे वायलेंट गेम हाई डिग्री का खेल रही है, खुद उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा होगा, डोमेस्टिक लाइफ बर्बाद होती है इससे, लड़के की भी होती है और लड़की की भी होती है। यानी वो एक फॉल्स आइडेंटिटी एक्वायर कर रही है कि अगर यानी वो इतना वायलेंस उसके अंदर भरा है कि वो उसको अमली दुनिया में फौरन सामने ला सकती है।
0: एक और मुश्किल यहाँ पे शादीशुदा ख्वातीन हैं जो एक अरसे से अपने
1: हाँ
0: शौक से ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन इसी
1: जी
0: गेम की वजह से बहुत हमको रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं
1: जी
0: कि पबजी खेल रही हैं, पबजी के ज़रिए से
1: ऑनलाइन कांटेक्ट
0: ऑनलाइन
1: हुआ,
0: कांटेक्ट हो गया, और वो
1: हाँ
0: शौहर को किसी एक मुल्क से छोड़ के आ गई यहाँ पे,
1: हुआ है
0: और एक नहीं कई कई केसेस जो हैं वो
1: जी
0: हुए हैं, लोग जो
1: जी
0: हैं वो, बहरहाल ये सारे मुश्किलात हैं।
1: आएंगे ये सब तो
0: तो
1: जी,
0: डिजिटल एडिक्शन का जो एक नुकसान ये हुआ कि इंसान का वक्त बर्बाद होता है,
1: वक्त बिल्कुल
0: और
1: बर्बाद
0: वो
1: हुआ हाँ,
0: इंसान की को डेवलप करने में, उसको तरक्की कराने में वक्त का सही इस्तेमाल एक अहम चीज़ है।
1: बहुत अहम चीज़
0: दूसरी
1: है।
0: चीज़

0: जो है वो उसके जहन के ऊपर असर पड़ता है,
1: जी
0: उसकी सोच के ऊपर, फिक्र के ऊपर असर पड़ता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसकी शख्सियत के ऊपर असर पड़ता है, उसकी
1: बिल्कुल
0: पर्सनालिटी जो है वो कभी जो है वायलेंट हो जाती है, कभी जो
1: हाँ
0: है वो सुस्ती का शिकार हो जाती है,
1: हाँ आइसोलेशन का शिकार है,
0: आइसोलेशन का
1: तन्हाई
0: शिकार हो
1: पसंद हो
0: जाती है,
1: जाता है
0: ये सारे
1: इंसान, डिप्रेशन
0: मुश्किलात
1: आता
0: उसमें।
1: है।
0: और क्या मुश्किलात हो सकते हैं जो कि आप स्टूडेंट से आपका रब्ता है?
1: देखिए जो जो जो मुझे ज़ाती तजर्बा हुआ है वो सबसे बड़ा ये है कि वो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हम क्लास में ही बैठे हैं तो हमको अपना गेम याद आ रहा है, या हमको याद आ रहा है कि हमारे पास इंस्टाग्राम है, हम वो रील नहीं देख पा रहे हैं। और मैं नौजवानों, क्योंकि नौजवानों के लिए प्रोग्राम है, इंस्टाग्राम ख़ास तौर पर आपको बेहयाई के बहुत मौके फराहम करता है। छोटी छोटी रील्स में भी आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपके अंदर इश्तेआल पैदा करती हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा चार्ज कर देती हैं, और जिसकी तरफ हम, पता नहीं मैं इस पे बात कर सकता हूँ कि नहीं, इंसान जो है वो सेल्फ प्लेजर की तरफ घूमने लगता है, यानी अपने को मज़ा देना खुद, और वो एक नहायत ख़राब अमल है जिसको मगरबी दुनिया अच्छा दिखाती है, मगर सारी रिसर्चेस बेकार हैं, क्योंकि वो भी अब तस्लीम करने पे आते हैं। इंसान की शख्सियत को बर्बाद करने में अपने को मज़ा देने वाले अमल बहुत ख़तरनाक पाए गए हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान तन्हाई का शिकार होते हैं, किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, स्पोर्ट्स उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अपना कमरा चाहिए होता है, खुद तन्हा हो और इंटरनेट अवेलेबल हो। जैसे आप फहाशी की जो दुनिया है, जो पॉर्न इंडस्ट्री है, वो सॉफ्ट पॉर्न का एक वर्ड इस्तेमाल होता है साइकोलॉजी में, यानी आपको वो हार्ड कोर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि जिससे आपके अंदर वो तड़प और वो मैडनेस जो है धीरे धीरे इन्फ्यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से आप खुद अपने ऊपर काम करते हैं या मौका मिलता है। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस पर रिपोर्ट्स हैं कि इस्मत दरी और रेप केसेस का एक, जिसे कहते हैं कि एक सर्ज हुआ है, तेजी से चीजें बढ़ी हैं, इनमें भी इस डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा रोल है।
0: यानी जैसे कहा जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइप के कंटेंट देखकर
1: जी
0: इंसान, जाहिर सी बात है, वो जब
1: वो इश्तियाल आता है, वो मवाद अंदर जा
0: वो
1: रहा
0: एक
1: है
0: चीज देख रहा है,
1: जी
0: थ्योरी देख रहा है,
1: प्रैक्टिकल
0: प्रैक्टिकल के लिए जो जब उसको वो सही
1: हाँ
0: तरीका नहीं मिलेगा, सही जायज रास्ते से
1: नहीं
0: वो
1: मिलेगा
0: क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कि वो उसकी इर्जा नहीं होगी, वो
1: जी
0: जाएगा क्या कहते हैं गलत रास्ते की तरफ, और अगर उससे भी उसमें भी अगर सामने वाला तस्लीम नहीं हो रहा है तो उसको फिर ज़बरदस्ती उसके साथ की जाएगी।
1: हाँ
0: तो ये रेप का जो चलन अब हमारे मुल्क में तो बहुत
1: हमारे
0: ज़्यादा
1: यहाँ तो इंडिया में तो बहुत
0: बहुत
1: ज़्यादा
0: ज़्यादा
1: केसेस
0: हो
1: हैं
0: गए हैं केसेस, और उनमें से
1: जी।
0: एक उसकी जो है वजह सोशल मीडिया
1: ये
0: पे सॉफ्ट पोर्न
1: सॉफ्ट
0: है।
1: पॉर्न देखने से होती है। दूसरी आगा में एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि एक और चीज़ चली है जो शैतानी हरबा है, कि दोनों राजी थे, यानी कॉन्सेंशुअल सेक्स कहा जाता है
0: जी
1: इसे।
0: जी
1: तो जब, यानी ये कि वो सॉफ्ट देखने के बाद ये लड़का और लड़की दोनों बराबर से वो गंदा कंटेंट देख रहे हैं, तो जहनियत दोनों की बर्बाद हो रही है, नफ्सियाती तौर पर वो सिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और ये दो बीमार लोग आपस में राजी होते हैं कि हम बगैर लेजिटिमेट वे के, शादी के बगैर भी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो मसाइल पैदा होते हैं वो तो सब समझ सकते हैं क्या
0: जी
1: हो
0: हाँ,
1: सकते
0: अगर
1: हैं।
0: रिपोर्ट्स देखें हमारे,
1: जी
0: अगर यूरोप में आप देखें,
1: छोटे बच्चों में जब हो रहा है तो
0: मैं यूरो रिपोर्ट्स जो है वो मैं लिव इन रिलेशन में लोग आ
1: जी
0: जाते हैं, और
1: जी
0: उसके बाद यह मिसाल तब कंसेशन जो है वो सेक्स
1: हाँ
0: होता है,
1: जी
0: उसके बाद रिपोर्ट से कहती हैं कि दोनों की जिंदगियां बर्बाद हैं।
1: बर्बाद हो रही है।
0: और यूरोप इस वक्त, इस यूरोप और अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा इस मसाइल से जूझ रहा है। इवन वहाँ की खवातीन जो हैं वो, यानी एक तरफ तो ये आज़ादी, जिंसी आज़ादी, और दूसरी
1: जी
0: तरफ आपकी खुद नाराज़ करें कि फेमिनिज्म ने इतना ज़्यादा जहनीत को ख़राब किया
1: जी
0: कि जिसके नतीजे में रिपोर्ट से कहती हैं कि अब वहाँ की खवातीन वापस पलट के आ रही हैं इस बात की तरफ, और ये कह रही हैं, मुतालबा कर रही हैं कि हमको फैमिली चाहिए,
1: यस
0: हमको
1: जी
0: जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि जहाँ पर औलाद हो, जहाँ पर
1: विश
0: शौहर हो, जहाँ पर एक ऐसा घराना हो कि जहाँ पर हम खुशहाली के साथ रह सकें। बहरहाल
1: बस
0: उसमें इस
1: है
0: चीज़ को ख़राब करने में सोशल
1: इसका
0: मीडिया
1: है
0: का और
1: हाँ,
0: डिजिटल एडिक्शन का एक बहुत
1: यानी
0: बड़ा
1: आपकी बात से एक बात और करके आपकी तरफ आता हूँ कि इसकी एक और जो बुरा नतीजा ये निकला है कि डोमेस्टिक और फैमिली लाइफ बेहद मुतासर होती है डिजिटल एडिक्शन से। जी
0: ओके। डोमेस्टिक से याद आया
1: जी
0: कि डोमेस्टिक वायलेंस,
1: डोमेस्टिक वायलेंस जी
0: इसमें भी जो है वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है,
1: क्योंकि अग्रेशन वो सिखा रहा है ना
0: जी, अग्रेशन वो सिखा रहा है, तशद्दुद वो सिखा रहा है
1: जी।
0: यहाँ तक बातें की हम लोगों ने, ज़ाहिरन हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए क्लियर हो गया।

0: जो मुश्किलात हैं उसकी जो मसाइल हैं।
1: जी
0: एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मेहनत
1: जी
0: करने के बाद इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बनाई, ये सब
1: हाँ
0: के सब क्या नुकसान के लिए बनाई गई हैं या इसका फ़ायदा भी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। देखिए, मुतलक इसको तर्क कर देना और इसको हराम कर देना वो अक्लन भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे नौजवान और हमारे सुनने वाले बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम चीज़ें जो होती हैं वो बजाते खुद बुरी नहीं होती हैं, हम उनका इस्तेमाल और जहाँ से वो बुराई की तरफ आपको ले जाएं वहीं पे आपको अवेयरनेस के साथ उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी जितना आपके लिए मुफीद हो, आपके किरदार साजी में, आपको तरक्की देने में, आपको अच्छा इंसान बनाने में, आपकी इल्म में इजाफे के लिए, वो बेशक इस्तेमाल करें उसे, लेकिन जहां से वो आपको खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रही हो वहीं से अवेयर यूज उसका होना शुरू। यानी आपको उसका यूज अपनी अक्ल और खैरत और नफ्स को सामने रख कर करना चाहिए, उसके अंदर खोकर और उसके अंदर डूबकर उसका गुलाम बन के नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, खुदी कि हम ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हदफ क्या है और हमारी अपनी कद्र कीमत क्या है और ये हमारी कद्र कीमत को कैसे बढ़ा सकती है। अगर नहीं बढ़ा सकती है या इन्हितात या गिरावट की तरफ ले जाए, डिप्रेशन की तरफ ले जाए, डिग्रेड कर दे, तो हम यहीं से इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर अगर वो हमको इन्हितात की तरफ ले जा रही है, हमको डिग्रेड कर रही है, तो हम यहीं से अवेयर होकर फैसला लेंगे कि हम इसे यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे।
0: तो किस तरीके से कर सकते हैं, राय हल क्या है उसका?
1: राय हल ये है, सबसे पहला राय हल ये है कि एक नौजवान का ये समझना कि वो इस लत का शिकार हो गया है, और ये नौजवान जानता है, हर नौजवान इस बात को जानता है कि हम इस एडिक्शन के असीर हो गए हैं, हमें हम पर असर हो रहा है, क्योंकि वो डांट खा रहा है ना घर में, उसकी स्टडीज़ में दिल लग रहा है, उसकी रिपोर्ट्स ख़राब हो रही हैं, उसकी फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो महदूद से महदूद तर होता चला जा रहा है, वो किसी बाहर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कम्युनिटी बिल्डिंग उसके लिए कुछ नहीं रह गई है, उसकी दुनिया है उसका मोबाइल है, उसकी उसकी लैपटॉप है, उसका स्क्रीन है, तो वो लोगों से सुन रहा है ये बातें कि तुम कैसे हो गए हो, तुम ना मिलते हो ना जुलते हो ना तुम आदम बेजार हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर क्या है ये, उसको कभी कभी वो एहसास होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब वहां जाके वो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, वो गेम हार रहा होता है, या वो देखते देखते माइंडलेस स्क्रॉलिंग जिसे कहते हैं करते करते वो थक भी जाता है ना, जहन को फटीग होता है, तब वो सोचता है कि ना उसके माँ बाप उससे अब उसके पास हैं, क्योंकि वो खुद बहुत दूर हो चुका है। पहला जीना सेल्फ अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस कि हम इस एडिक्शन का शिकार हैं, और इसका एक्सेप्टेंस कि हम मरीज हैं, हम हैं बीमार। अब दूसरा ये है कि वक्त की कद्र, और वक्त क्योंकि अल्लाह की तरफ से अमानत है तो इस अमानत का ख्याल करना।
0: उसे कैसे समझाएंगे हम, यानी ये खाली उसी की जिम्मेदारी है?
1: नहीं, ये जिम्मेदारी अब माँ बाप की आती है, घर में जो बुजुर्ग हैं माँ बाप हैं वो जब इस बच्चे को ऐसी चीज़ों में देखें तो उसके साथ डायलॉग का प्रोसेस शुरू करें, खुद भी इन्वॉल्व ना रहे उसके सामने कि खुद भी मोबाइल देख के चले जा रहे हैं।
0: Exactly, और मैं इसी पॉइंट की तरफ आपको लाना चाह रहा था,
1: ये हो रहा है सामने,
0: हमारी खुद हम लोग देखें, अगर
1: कहीं ना कहीं हम भी होते हैं, करते हैं,
0: जब मोबाइल देखते रहते हैं हम, और जब क्या कहते हैं तो हमारे बच्चे वो अपनी दुनिया में रहते हैं, माँ बाप जो है वो अपनी दुनिया में मसरूफ हैं, तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से सबसे पहली जिम्मेदारी ये है,
1: अग्री करता हूँ आपसे,
0: हम अवेयर हों, हम जो है वो अपने आप को इस एडिक्शन से पहले नजात
1: बाज रखें, हाँ।
0: उसके बाद, क्योंकि अगर हम नजात नहीं देंगे अपने आप को नहीं इस चीज से निकालेंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो खराब होगा, और फिर जो मुश्किलात आपको बताई सामने वो आएंगी,
1: आएंगी।
0: तो एक तो पहली जिम्मेदारी वालदैन की है, दूसरी जिम्मेदारी जो है वो खुद उसकी है, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए, वक्त का। अब एक स्टूडेंट, अकलमंद स्टूडेंट जो है उसको हमें बावर कराना पड़ेगा, उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि तुम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो,
1: करो,
0: तुमको आगे कहाँ बनना, जो तुम्हारा टारगेट है उसको बताना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी के कुछ गोल है, तुम्हारी जिंदगी के कुछ टारगेट्स हैं, वहाँ उसको तुमको अचीव करना है, उसके लिए तुम्हें वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा,
1: जिसे आप काउंसलिंग कहते हैं। ये स्कूल लेवल पर और घर पे या मदरसे में जहाँ भी कहीं जाए, मेरा मशवरा यह है कि काउंसलर्स हर जगह रहें और बच्चों से डायलॉग करें। ऐसे बच्चे जो डिजिटल एडिक्शन का शिकार होते हैं वो बहुत तन्हाई पसंद हो जाते हैं, फिर वो डायलॉग नहीं करते।

0: जल्दी वो डिप्रेशन का शिकार हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनकी स्पीच जो है वो मुख्तसर हो जाती है क्योंकि जहन तो उनका डिजिटल दुनिया में लगा हुआ है, तो आपको उनको उभार के बाहर लाना है।
1: ठीक है, अभी देखिए सारी बातें हम लोगों ने की दुनियावी लिहाज से, दीन क्या कहता है इस सिलसिले में, कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है, कोई अगर आप बताएं तो।
0: जैसे मैं सूरह मोमिनून की जो आयत है उसका मफहूम पेश करता हूँ कि

0: तो आपको उनको उभार के बाहर लाना है।
1: ठीक है, अभी देखिए सारी बातें हम लोगों ने की दुनियावी लिहाज से, दीन क्या कहता है इस सिलसिले में, कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है, कोई अगर आप बताएं तो।
0: जैसे मैं सूरह मोमिनून की जो आयत है उसका मफहूम पेश करता हूँ कि मोमिनून, मोमिनीन की सिफात में से एक सिफत यह है कि वो हर लगो चीज़ से दूर रहते हैं,
1: लगव से दूर रहते,
0: जो भी हर चीज़ वो कि जो इंसान को जिक्र खुदा से, याद खुदा से, इंसानियत से, अच्छाइयों से दूर कर दे, वो किसी भी तरह का जो जैसे आप कहते हैं कि एडिक्शन है या उस तरह की बेराह रवी है, या दूर हो जाना कि जो खत्ते मुस्तकीम है आपका, कि आप बंदे खुदा हैं, आपका रब है, उसका आप पर हक है, साथ साथ बंदगान खुदा का आपसे राबता है, रिश्ता है, उनका आप पर हक है, इससे जब इंसान दूर हो जाए और वो अनिल लग्व मुअरिज़ून कुरान कह रहा है कि वो उससे एराज करे, वो उनसे अपने को दूर रखे जो भी चीज़ उसको नुकसान पहुंचा रही है।
1: बेशक अभी आपने हक की बात की यहाँ पर कुदसी भाई जी, अगर दीन इस्लाम बहुत प्यारा दीन है, बहुत ही खूबसूरत दीन है,
0: बेशक
1: हुकूक की रियायत, इंसान का अपने ऊपर हक,
0: खुद अपने नफ्स पे हक,
1: अपने नफ्स के ऊपर जो नफ्स जो अपने ऊपर हक, इंसान का अपने आज़ा व जवारे के ऊपर हक और आज़ा व जवारे का खुद इंसान के ऊपर हक,
0: बेशक
1: ठीक है, वालदेन का हक एक दूसरे का के ऊपर, ठीक है, बच्चों का हक वालदेन के ऊपर, वालदेन का बच्चों के ऊपर, माशरे के ऊपर माशरे का, ये सारे हक ऊपर, और इन हुकूक की रियायत जो है वो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है, बाज़ मौके के ऊपर ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो मुश्किलात आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं, इस वजह से आ रही हैं, इस वजह से आ रही हैं, लेकिन रवायात कहती हैं कि मुश्किलात जो तुम्हारे पर आ रही हैं वो हुकूक अदा न करने की वजह से आ रही है,
0: बिल्कुल है, है।
1: बाज़ मौके के ऊपर जो है वो हम खुद अपने ऊपर जो है जुल्म करते हैं और अपना हक मार देते हैं
0: जी,
1: और वो मुश्किलात हमारा जो है वो पीछा पकड़ लेती है। दुआए कुमैल बड़ी खूबसूरत लफ्ज़
0: जुमले, क्या क्या जुमले
1: जी, वहाँ पे आके दुआ हो रही करेंगे, ज़लम तू नफसी, ज़लम तू नफसी, परवरदिगार हमने अपना हक मारा है,
0: वो
1: तजर्रा तो बेयदी यदि, और ये जुरात जो है वो मैंने खुद की है और मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है, तो ये इन तमाम चीज़ों का जो कनेक्शन है वो खुद यहाँ पर आकर हमसे होता है,
0: हमसे होता
1: सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वक्त की बर्बादी, उसके असरात को अपने ऊपर लेना, ये इंसान को आगे बढ़ने से ये चीज़ें रोकती हैं,
0: बिल्कुल रोकती हैं।
1: उसी भाई आगे जाने वो जो हुकूक वाली बात चल रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे जब
0: नफ्स वाली बात जो आई जी, तो वो आगा बड़ी अच्छी बात आपने जो है वो छेड़ी है, और मैं इस पे अपने सुनने वालों को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल करता हूँ, जो रिसालतुल हुकूक आपने उसका इशारा किया कि मौला अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसान और उसके आज़ा व जवारह के हुकूक बयान किए, जहाँ माँ बाप के, समाज के, एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही इंसान का ख़ुद अपने नफ्स पर क्या हक है, नफ्स का उस पर क्या हक है। मौला का कौल है कि तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक ये है कि उसको अल्लाह की इताअत में सर्फ करो, इताअत खुदा। और आपने दुआए कुबैल का इशारा किया, उससे मरबूत कर दें कि मौला इब्तदाई जो जुमले हैं मौला के कि अल्लाहुम्मग़फिरलिय्ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल्बला, यानी ये जो आप जो लगव में पड़े हैं आप, ये बला का नुजूल हो रहा है क्योंकि गुनाहों में उब्तला हैं, गुनाह फ़क़त हम बहुत लिमिटेड वर्जन में गुनाह समझ लेते हैं, यानी अल्लाह ने जिस वक्त को हमें अमानत के तौर पर करार दिया, अगर हम उसे वेस्ट कर रहे हों ये भी गुनाह है
1: जी, आपको वेस्ट कर रहे हैं, अपनी सलाहियत को वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, अपने वक्त को वेस्ट कर रहे हैं,
0: कर रहे हैं,
1: ये सब का सब जो है वो जुल्म है।
0: जहन दिया है किसी और अच्छे काम के लिए, हमने कहीं और लगाया हुआ है, आंखें किसी और काम के लिए, हमने कहीं और लगाया हुआ है, तो वक्त जो टाइम जो आज की मुतमद्दिन दुनिया टाइम मैनेजमेंट पर इतना जोर देती है, तरक्की की राहों को आगे बढ़ती चली जा रही है, हमने उसको एडिक्शन में लगा दिया है, तो इसलिए जो है हमारा जो नफ्स का हक है कि हम उसे इताअत खुदा में लगाएं, और अल्लाह यह चाहता है कि हम वक्त का सही इस्तेमाल करें, उसकी खुशनुदी हासिल करें, गुनाहों से अपने को बचाएं, और हर उस काम से अपने को रोकें अवेयरनेस के साथ कि जो हमें ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर नुकसान पहुंचा रही है।
1: बेशक यहाँ पर सिवाय उलमा का भी बहुत बड़ा किरदार
0: जी
1: होता है
0: जी,
1: ठीक है, तो ज़ाहिर बात हमने समझ लिया है कि हम जो है हमारा काम सिर्फ यही कि मजलिस पढ़ें, हमारा काम ये है कि हम यानी जिसे कहते हैं कि किताबें पढ़ा दें, कुरान पढ़ा दें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये अवेयरनेस पैदा करना, ये बेदारी पैदा करना इसमें हम उलमा का बहुत अहम किरदार है। लिहाजा यहाँ पर ज़रूरी है कि अपने जवानों को उनसे कनेक्शन पैदा करें, जवानों के पास जाइए। जो अवेयरनेस की बात हो रही थी कि इंसान को बताएं कि तुम क्यों हो, तुम किस लिए

0: आए हो, तुम
1: जी,
0: क्या हो,
1: क्या हो, और इस दुनिया की जो है वो शक्ल सही दिखा दें कि इसको एक्सपोज करें,
0: इस दुनिया को कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ। दुनिया हो, अब दुनिया मज़रउल आखरा,
1: मज़रउल आखरा है, जी,
0: जो है वो हदीस पाई जाती है
1: जी,
0: तो दुनिया जो है वो आखरत की
1: हाँ।
0: खेती है
1: बेशक।
0: तो तुम इस दुनिया को, दुनिया मुकम्मल तौर पर बुरी नहीं है, दुनिया का इस्तेमाल सही और गलत हो सकता
1: बेशक,
0: है
1: बेशक।
0: ये सारी चीजें हैं। आखिरी बात, क्योंकि वक्त जो है वो तमाम हो रहा है तकरीबन,
1: जी, जी।
0: मैं आपकी खिदमत में आखिरी
1: टॉपिक इतना गहरा है क़िबला के, दिल चाह रहा है कि इस पर बहुत गुफ्तगू हो और कई पार्ट्स में गुफ्तगू हो, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त
0: करेंगे, दूसरे भी इंशाल्लाह उलमा के साथ
1: जरूर करेंगे इंशाल्लाह, जी जी,
0: क्योंकि अभी बहुत सी बातें हैं इसमें,
1: बहुत सी बातें हैं बिल्कुल।
0: तो वापसी, एक इंसान आगे निकल गया है, एक एक जवान, एक कोई बूढ़ा शख्स, एक कोई बच्चा, एक जो है वो, मैं आके इसको जो माशरे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, मैं जवान के ऊपर फोकस करता हूँ कि एक जवान, एक टीनेजर जो है वो इस आगे निकल गया है, तो वापसी का रास्ता क्या है?
1: वापस पहला कदम वही मैंने कहा कि जैसे आप जिक्र किया कि सेल्फ अवेयरनेस तो है ही, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। देखिए जो उसके करीब तरीन लोग हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं जो कि इस बीमारी से बचे हुए हैं, वो उसको तनहा ना छोड़ें, उसको फोरसेक ना करें कि अब हम क्या करें भाई, वो तो लत में इन्वॉल्व है, हम जो सुनते ही नहीं है, छोड़ो उनको, हम अपनी तरफ आगे जा रहे हैं। नहीं, लेट गो ना करें, साथ लगे रहें, प्यार से, मोहब्बत से, और मर्सी के साथ, काइंडनेस के साथ, लव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उस नौजवान की काउंसलिंग जारी रहे। फिर वो खुद नौजवान, अब उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो ये इस बीमारी को जान ले कि वो बीमार है, तो फिर वो तबीब की तरफ रुख करे, जिक्र खुदा, नमाजों में, मैं कहता हूँ 5 मिनट की नमाज पढ़ें, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ मेरी इसलाह कीजिएगा, दुनिया भर के वज़ायफ भी एक एडिक्शन हो जाते हैं, वो अलग मौजू है। आप नमाज पंजगाना पढ़ें, वाजिबात पढ़ें, मगर अवेयर होके पढ़ें कि इस वक्त किसकी बारगाह में है। जिक्र खुदा, कम्युनिटी बिल्डिंग, आपकी जो शिया कम्युनिटी है, अहले सुन्नत से आप हैं या नॉन मुस्लिम भी आप हैं, हम सब के लिए बात कर रहे हैं, सब बीमारियां सबको जकड़े हुए हैं, अपनी कम्युनिटी में आपका क्या रोल है और क्या कंट्रीब्यूशन है। किसी बच्चे की तालीम के ऊपर तवज्जो, कोई ऐसा काम करना जिससे लोग खुश हो रहे हों, किसी बूढ़े की मदद कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी एनजीओ में थोड़ी देर जाके पढ़ाई करना, यानी आप वक्त का जब इस्तेमाल सही जगह पे उसको आप जाएंगे, उसको चैनलाइज करेंगे वक्त को, तो आपको एडिक्शन से बाहर निकलने में आसानी मिलेगी। जितना ज़्यादा आप बेकार बैठेंगे और आपका न कम्युनिटी से कोई ताल्लुक, ना माँ बाप के से ताल्लुक, ना भाई बहनों से ताल्लुक, तो वो जितना टाइम ये बच रहा है, ये शैतान आपको गलत राह पर ले जाएगा इस टाइम।
0: बेशक, यहाँ पर मैं एक और चीज़ इजाफा कर दूँ
1: बिस्मिल्लाह
0: की इजाज़त से, और ये कि यहाँ पर एक जवान को हमारी जिम्मेदारी है, वालदैन के एतबार से, उलमा होने के एतबार से, रहनुमा होने के एतबार से, कि ये बताएं कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद है, तुमको उस मकसद तक पहुँचना है, और उसके लिए तुमको प्लानिंग करनी है, टाइम मैनेजमेंट और ये सारी
1: वही डायलॉग जो करना है आपको उसे, जी।
0: दूसरी बात, उसको ये बताना है, और ये हमारे जवान ख़ास तौर पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिसें मेंबर, ये जो है उसने इस हद तक बेदार कर रखा है हमारी कम्युनिटी को,
1: अभी ऐसी बातें हो रही हैं जी जी,
0: तो उसमें उसको ये बताना है कि तुम्हें कोई देख रहा है,
1: बेशक
0: तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई इमाम भी मौजूद है जिसके सामने तुम्हारे आमाल को पेश किया जाता है,
1: बेशक,
0: और तुम्हें जो काम करना है वो उसके लिए करना है, वो तुम्हारा इमाम जो तुम्हारे बुरे आमाल देखता है तो नाराज होता है,
1: रंजीदा होता है, बेशक,
0: और तुम्हारे अच्छे काम के लिए उसको तवक्को है, तुम्हारे जो आमाल हैं, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसके आने और ना आने में असरअंदाज है।
1: सही,
0: हमारे इमाम हम कह रहे हैं अज्जिल अला ज़ुहूरिक, अज्जिल अला ज़ुहूरिक, लेकिन अज्जिल अला ज़ुहूरिक में हमारा बहुत बड़ा किरदार है, हमारे अमल का, हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम काम उसकी राह में करेंगे तो उनका आना, वो वक्त जो है वो नज़दीक आ जाएगा,
1: आ जाएगा,
0: और जितना ज़्यादा हम उस राह से दूर हटेंगे उतना ही उनके आने में
1: रुकावट और हिंड्रेंस आ रही, ताखीर हो रही है जी।
0: लिहाजा सबसे अहम बात यह है कि कोई भी काम हम करें इस बात को देख के करें कि हमारा इमाम हमारी तरफ जो है वो तवक्को लगाए हुए है कि तुम कुछ ऐसा करो कि हमारे आने का रास्ता और ज़मीना फराम हो सके। बहुत ज़्यादा बातें बाकी थी भी, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन वक्त हमारा तमाम हो गया है। इंशाल्लाह इसी किस्म के या इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए किसी और आलिम दीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
2: अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयक अल फरज।